0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी बुलबुल दत्ता। हिंदुस्तानी संगीत के तहत और भक्ति संगीत के समापन अंश में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और श्यामा संगीत। कलाकार हैं देवाश्री मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है ये श्यामा संगीत, कलाकार देवाश्री मुखोपाध्याय।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Bulbul Datta. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. We conclude the concert with Shyama Sangeet by our artist Deboshree Mukherjee.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज की कलाकार थी देवश्री मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज देवश्री मुखर्जी। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ प्रोग्राम ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

Derek,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन. कलाकार हैं कौशिक चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चित्तरंजन दुलोई. तो ये प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार कौशिक चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन music. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our next artist Kaushik Chattopadhyay, accompanying on the harmonium Chittaranjan Dalui. Now listen to a tabla recital in Teen Taal by our artist Kaushik Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरव में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव में ख्याल गायन, कलाकार ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय।
1: You are listening to a tabla recital in Teen Taal by your artist Kaushik Chattopadhyay, accompanying on the harmonium Chittaranjan Dalui. This is Ragam, 24/7 anytime Indian music. This morning, we present a khayal in Rag Bhairo. Our artist this morning, Brajeshwar Mukhopadhyay, accompanying on the tabla Joy Das Gupta and on the harmonium Ratan Natta. Now, listen to a khayal in Rag Bhairo by Brajeshwar Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे जॉय दास गुप्तो और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भैरव बाय ब्रजेश्वर मुखोपाध्याय, एकम्पानिंग ऑन the tabla Joy Das Gupta and on the harmonium Ratan Natta. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल पर। आज के हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं ठुमरी दादरा गायन। कलाकार है विदुषी अश्विनी टिड़क। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया मिश्र जौनपुरी राग में दादरा सुनते हैं। बोल है नई छुलन की छैया बलम धूप हरिया। तो आइए सुनते हैं मिश्र जौनपुरी राग में दादरा, कलाकार अश्विनी टिड़क।

अभी आप सुन रहे थे अश्विनी तिलक द्वारा प्रस्तुत मिश्रत जौनपुरी राग में दादरा, और अब सुनते हैं मिश्रत देश राग में ठुमरी। बोल है सावन आयो मास, कलाकार अश्विनी तिलक।

अभी आप सुन रहे थे मिश्रा देस राग में ठुमरी, कलाकार थी अश्विनी टिळक। और अब आपने प्रस्तुत की मांज खमाज राग में ठुमरी सुनते हैं। बोल है बैरन रतिया कैसे आऊं।

अभी आप सुन रहे थे मांझ खमाज राग में ठुमरी, कलाकार थी अश्विनी टिड़क। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं, आपने प्रस्तुत किया मिश्र पहाड़ी राग में दादरा। बोल है सावन का नजारा है ऐसे में आ जाओ सनम।

आप सुन रहे थे ठुमरी दादरा गायन, कलाकार थी अश्विनी टिड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल पर। भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to Vilambit Ektal. The lyrics are Kala Nahi Pave. This will be followed by a Chota Khaya set to Drut Tintal. The lyrics are Din Gaye Beet Sukh Ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून टर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तब पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घुंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित तीन ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। He was accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओ, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है विजय कोपरकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मालकम सुनते हैं, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है हे श्याम माधो राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सोवन देरे अब, और सुनते हैं तराना। सात संगत तबला नायक फाटक, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग मालकम। आपके साथ तबले पर थे विनायक फटक, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरी भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मोरे मन बसो राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है सुर सुर से साधल रसिक। साथ संगत तबला विनायक फटक और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय कोपरकर द्वारा प्रस्तुत राग बैराग भैरव। आपके साथ तबले पर थे विनायक फटक और हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पर हर समय आपके साथ।

0: 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ख्याल। कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर हैं सौमेन नंदी और हारमोनियम संगी हैं सनातन गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर ख्याल। कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the Rag Jog. Our artist is Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying our artist on the tabla is Shomen Nundi and on the harmonium is Sanatan Goswami. Listen now to Khayal in the Rag Jog. Our artist, Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आपके साथ तबले पर संगीत है सौमेन नंदी और हारमोनियम संगीत है सनातन गोस्वामी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार। आपके साथ तबले पर है सुजीत कुमार दास। लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन। कलाकार है सपन मजुमदार।
1: You were listening to Khayal in the Raag Jog. Our artist was Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying our artist on the tabla was Shomen Nundi and on the harmonium was Sanatan Goswami. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist is Shopon Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Sujit Kumar Das. Listen now to the guitar in the Raag Gorakh Kalyan. Our artist, Shopon Mojumdar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गोरख कल्याण पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सपन मजुमदार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुजीत कुमार दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग गोरख कल्याण। आवर आर्टिस्ट वॉज सपन मजुमदार। Accompanying our artist on the tabla was Sujit Kumar Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन तीन ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश हुगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा हुगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, जडेश इनकल्केटेड अ सेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एट द टेंडर एज ऑफ 8 he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Satlingappa Desai Kallur, a top-grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals, incorporating various styles of performances. Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hogar will begin his performance of tabla solo in Teen Tal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vasudmat.

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश हुगार जी से तबला वादन में रूपक ताल। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाई पंडित जडेश हुगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रदमठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रदमठ। This program was recorded at the studios of Akashavani, Kalaburgi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट has been provided by Pandit Ramswarup Ratonia on the tabla and Praveen Shivlikar on the violin.

टाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Rhythm 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है पंच सतीश चंद्र का सितार वादन. सबसे पहले आप राग जौनपुरी प्रस्तुत करेंगे. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत भी तीन ताल निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र. तो आइए सुनते हैं पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनरत भारती संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग जौनपुरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग किरवानी। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शतचंद्र का बजाया सितार पर राग किरवानी। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे सितार पर बजाया राग गारा में एक धुन से, जो कि दारा में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सतीश चंद्र का बजाया सितार पर राग गारा में धुन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे शीतल प्रसाद मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उमा गर्ग का गाया राग श्याम कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, झूलत राधा प्यारी, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं बावरी भई पिया बिना. तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.

0: लीजिए अब सुनिए उमा गर्ग का गाया राग कौसी कान्हड़ा। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं इन बीत गए, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, शी नाउ प्रेजेंट्स राग कौसी कान्हड़ा। शी फर्स्ट प्रेजेंट्स विलंबित ख्याल टू एक ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस विलंबित ख्याल आर दिन बीत गए। दिस विल बी फॉलोड बाय द द्रुत ख्याल सेट टू तीन ताल। द लिरिक्स ऑफ दिस आर काहे करत मोरी बरजोरी।

0: अभी आप उमा गर्ग का गाया राग कौंसी कान्हरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिस्निंग टू राग कौंसी कान्हरा संग बाय श्रीमती उमा गर्ग। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री अख्तर हसन, ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। This program is a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित संजीव अभ्यंकर ने गाई इस भक्ति रचना से।

पंडित संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली पारंपरिक भक्ति रचना आइए सुनते हैं आरोही राजूरकर के स्वर में।

आरोही राजूरकर ने गाई ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर कुलकर्णी के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री मलिक के स्वर में ये भक्ति रचना।